0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जीलोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
3: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
4: Desh bhakti to yaad aa gayi.
5: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
2: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
6: Ye border chal rahi hai?
2: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
7: DJ wale babu mera gana chala to.
8: Sat Sri Akaal, Shuboy Badshah. Te tusi sun rahe hain 1674 AM Radio Hanji.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमीग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमीग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM।
1: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटां ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवें वाले दिनां च भी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।

0: खापी।
1: मैं सोचती सी के अपन कबड्डी की टीम बना ली।
2: तू पलवान बनना, पलवान जम।
0: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जयदीप वड़िंग, नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हसनैन चौहान ते होर बहुत सारे सितारिया नाल सजी फिल्म रिलीज होने जा रही है थोड़ी नेड़ले सिनेमा घरां दे विच अक्टूबर 16, 2026 नू।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू। नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा चा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ,

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: यार तू इतने नीचे थी, आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: ਫੁਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: हाँ
1: भावे पैरा ते मट्टी मली होए
2: नहीं हाँ। पूरा आगे पूरा पूरा मतलब मान लो कोई निकाजा हाँ। निकाजा तौलिया
3: बुरा
2: लगदा बंदा
3: सिमरन भाजी 36% तो ने ना जिहड़े समाज तो हजे भी आस रख रहे ने डिस्कनेक्ट नहीं होए
2: चलो ये दसणगे ना
1: सच्ची क्योंकि भाई मेरा मन आवे हो सकता डिसएग्री हो सारे बट सोसाइटी असी हाँ है ना मैं भी सोसाइटी हाँ तुम भी सोसाइटी हो अच्छा मैंने उन्हें जवाब दो जो कॉफी वाला बंदा तो बोल गया तुम अगली बार कोई इदा का इंसीडेंट होगा पिछले वाले नहीं कहोगे दोबारा कहोगे कि कहोगे कि नहीं कहोगे मैं मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछ रहा
2: कि कदा
1: जी मैं जो कॉफी वाला औखा जहा बोल गया हाँ यस है ना अगली बार इंसीडेंट किसी कोई होर खड़ा होगा तुसी नहीं कहोगे सॉरी कि छड़ दोगे तुसी नहीं बुलाओगे पिछली अगली बारी बंदे नू
2: डिपेंड करता मैं हूं एवं कुछ इतने स्टेटमेंट दे दा उदो डिपेंड करूगा मूड ते अगला हो सकता मैं स्कैनिंग वध करा पहला मैं घूम के वेख ला भी कि सड़ियल जहा वा के की आ मतलब वो मैं बाद च अपने आप च रियलाइज किया भी वैसे वो वेशभूषा तो ना इस औकात आला है नहीं सी भी मैं उन्होंने कहिंदा कई बार आप कई बार आप वेख के भी बंदे का ना ता मूड बहुत वधिया हुंदा वा
3: बाकी
1: मेरे ना बस च साडी आदत होंदी है कि असीं बुलाउंदे आ है ना जदों बस चलदी हुंदी तुसीं देखोगे ड्राइवर दूजे ड्राइवर नूं हथ मारदे ठीक है एक कुड़ी इत्थे चलाउंदी है ते ओह गोरी आ ते ओह मैं बड़ी बड़ी हथ मारे उन्हें नहीं मार दी बट स्टिल आई डू इट मेरी आदत आ ठीक है उदा भी जो असि लंच रूम च होंगे गोरियां एक अलग टोला बैठा होंगे ठीक
2: है हाथ ना हाथ मतलब वेव कर दे हाथ ते हाथ मार अच्छा दूरों दूरों
1: मतलब बस चो हां जी हां जी आप आमने सामने जो बस जा रही होंगी कभी देखो ड्राइवर हाथ मारेगा चलो ऐदा गल हो रही एक दिन ना दो महीने हो गए है ना कि ऐदा होया तो मेरे बस दे कोल आके खड़ी होगी कहिंदी हाय है ना कहिंदी योर नेम इज सिम मैं हां कहिंदी तू मैनू वेव करदा तू देखा होना मैं वेव नहीं मैनू लगे मैं तेन कहना चाहिए मैं मेरे गल तेन गल करनी चाहिए आ मैं कहा दस कहिंदी मैं ना जो इतने आंदी सी ना जो लंच रूम च ते कोई इंडियन कहिंदी डोंट मैं आना मन नहीं मैं रेशियस हाँ बट मैं मेरी एक ऑब्जरवेशन आ जो मैं इंडियन नूं कहिंदा उन्हां अखां थले करके ना गुड मॉर्निंग करके थलो निकल जाता सी ते अगे जाके अपनी सोसाइटी च बह के तो हा ही हू हू करता हुंदा सी ते ओह मतलब मैनू रिस्पोंस नहीं आंदा हुंदा सी ऑब्वियसली कोई उतर के नहीं जा रहा कोई नहीं जा रहा पर आइस ब्रेक होगी उस तो बाद हुण चलो जो भी साडी उस वेले कन्वर्सेशन हुई मैं थोड़े जिहे उहनूं लूप परतां खोलियां क्यों मैनूं परतां पता सीगियां क्योंकि मैं कोई कैंट नहीं बट मैं विचर रहा सोसाइटी ऑस्ट्रेलियन नाल भी स्कॉटिश नाल भी मैं न्यूजीलैंडर नाल भी अफगानी नाल भी जो साड़ा पड़ोस है जो कि मैं दसदे हैं हूँ ये भाजी जो असी इंडिया जेडे भी भाजी कहते हैं जिन्होंने फोन किए मैं मानता कि सारे पहले सत श्रीकाल बोलते होने पर इन्हों जवाब अपने आप तो पूछना चाहिए कि असी पहल करते हैं कभी क्योंकि इंडिया च सानू नहीं असी अनजान बंदे नू देख के सत श्रीकाल करते जो असी ऑस्ट्रेलिया आए तो इतने यह आदत सानू पई विच इज गुड की हुण असी करदे आ पहल रिस्पोंस आए ना आए ठीक है मन गया हुण इक तुहानू नैगेटिव एक्सपीरियंस हो गया मन गया की इस तो बाद तुसी करोगे कि नहीं करोगे जे हट गए तो लेयर ऐड होगी फिर दूजी लेयर फिर तीजी लेयर फिर चौथी लेयर पर जिहड़ा पंजवां घैंट बंदा ना उहने कह देना कि भाई इंडियन तो देख के मैनू कहिंदे ही नहीं सत श्रीकाल इंडियन है ना या पग बन्नी मैं तो सरदार है ना मेरा मनना है मैं सही हो सकता गलत

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM 24/7 ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਸਿਡਨੀ ਕਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ।
3: दिवाली रोशनी का त्योहार तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं। इसमें चार चांद, रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियाँ बने और भी रोशन शान के साथ।
4: यार तू इतने इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ IME एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जो स्टूडेंट वीजा तो PR तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन का मसला ना जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरिया तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा या स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक। हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर। कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
1: सतिकाल, मैं हजीन शेरगिल से सुन रहे हैं और रेडियो हांजी 1674 AM।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: हैप्पी।
1: मैं सोचती सी कि अपन कबड्डी की टीम बना ली।
2: तू पहलवान बनना, पहलवान जम।
0: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जयदीप वडिंग, नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हशनीन चौहान ते होर बहुत सारे सितारियां नाल सजी फिल्म रिलीज होने जा रही है थोड़ी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच अक्टूबर 16, 2026 नू।
3: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
4: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
5: Desh bhakti to yaad aa gayi.
6: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
3: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
7: Ye border chal rahi hai.
3: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
8: Din par de kamma karan ch kar paise bhejna shamil karna chahunde ho. Zindagi tuhanu chahe jithe vi le jave. वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिना च भी तुहाडे अपनिया दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
9: लादे फेर

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: अपनी टोयोटा चूज कर ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-256-212-216 वेरबी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ IME एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो PR तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ IME एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो PR तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618, हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।
4: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: यार तू इतनी नीचे थी, आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
3: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: हैप्पी।
1: मैं सोचती थी कि अपन कबड्डी की टीम बना ली।
2: तू पहलवान बनना, पहलवान जम।
0: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जयदीप वडिंग, नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हशनीन चौहान ते होर बहुत सारे सितारिया नाल सजी फिल्म रिलीज होन जा रही है थोड़ी नेड़ले सिनेमा घरां दे विच अक्टूबर 16, 2026 नू।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
4: नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186-189-190-482-491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर। कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: हाँ जी सुनील ग्रोवर, सुनील ग्रोवर, हाँ जी 16-74 ये नहीं है 71-72 ये है 16-74 ये है 16-74 सुनते रहो, सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: मैं सोचती सी के अपन कबड्डी दी टीम बना ली।
1: तू पहलवान बनना, पहलवान जम।
2: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जयदीप वडिंग, नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हशनीन चौहान ते होर बहुत सारे सितारियां नाल सजी फिल्म रिलीज होने जा रही है थोड़ी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच अक्टूबर 16, 2026 नू।
3: दिन भर दे कम्मां कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिना च भी तुहाडे अपनिया दा साथ नहीं पाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरिस पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच भी तुहाडी सेवा विच।
4: Hi, hello, this is Ali Asgar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए, लेकिन

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: अक्षरा जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। आई एम ई एडवाइजर।

0: this autumn, laugh out loud with Ayushman Khurrana and Saad Ali Khan in Urta Teer.
1: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
2: Desh bhakti to yaad aa gayi.
3: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
0: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
4: Woh ye border chal rahi hai?
0: Nahi ji, ye to Urta Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
5: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
6: रेडियो हाँ जी 1674

0: हैप्पी।
1: मैं सोचती थी कि अपन कबड्डी की टीम बना ली।
2: तू पहलवान बनना, पहलवान जम।
0: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जयदीप वडिंग, नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हशनीन चौहान ते होर बहुत सारे सितारियां नाल सजी फिल्म रिलीज होने जा रही है थोड़ी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच अक्टूबर 16, 2026 नू।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा चा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
4: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji.

0: दो
1: यार। तू इतनी नीचे थी, आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: तीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो।
5: ससिकाल शुभोय बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: सत श्री अकाल जी, मैं तो अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमीग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमीग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। आईएमई एडवाइजर।
3: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें 4 चांद, रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਚਲੋ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਫੁੱਲ ਘਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: सेक्सी।
1: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: ਸਤਿਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੀਨ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।
1: अखियों से हाय हाय कोली।

दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हाजी लिसनर्स।

0: गौड़ी सुखमी महला पंजवा सुखमी सुख अमृत प्रभ नाम भत जना कै मन विश्राम सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद
1: आद गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै
0: सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो
1: सिमरो जस प्रसंबर एक है नाम चबत अगनत अनेक है
0: वेद पुराण सिमर सदाखर कीने राम नाम एक अखर
1: जिनकै जे जीव सावै ताकि महिमा गनी न आवै
0: कांखी एक है दर्श तुहारो नानक गुण संग मोहे उधारू
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ
0: प्रभु कै सिमरन गर्भ नवसै प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै
1: प्रभु कै सिमरन काल पर हरै प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै
0: प्रभु सिमरत काछ बिघन लागै प्रभु कै सिमरन आनंद न जागै
1: प्रभु कै सिमरन भव न व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै
0: प्रभु कै सिमरन सार कै संग सर्व निधान नानक हरंग
1: प्रभु कै सिमरन सिद्ध नौ नित प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभु कै सिमरन जपता पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा
1: प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु कै सिमरन दरगाह मानी
0: प्रभु कै सिमरन होय सो भला प्रभु कै सिमरन सो फल फला
1: श्री सिमरै जिने आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए
0: प्रभु कै सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा
1: प्रभु कै सिमरन तिसना बुझै प्रभु कै सिमरन सब के सूझै
0: प्रभु कै सिमरन नाही जम तरसा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा
1: प्रभु कै सिमरन की मल जाए अमृत राम रिद महे समाए
0: प्रभु जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना
1: प्रभु को सिमरै सी धनवंते प्रभु को सिमरै सी पतवंते
0: प्रभु को सिमरै सी जन परवान प्रभु को सिमरै सी पुरख प्रधान
1: प्रभु को सिमरै सी बेमुहताजे प्रभु को सिमरै सी सर्व के राजे
0: प्रभु को सिमरै सी सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी
1: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला
0: प्रभु को सिमरै सी पर उपकारी प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी
1: प्रभु को सिमरै सी मुख सुहावै प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै
0: प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता
1: प्रभु को सिमरै तिन अंध घनेरे प्रभु को सिमरै बसे हर नेरे
0: संत कृपा ते आनंद न जाग नानक सिमरन पूरै भाग
1: प्रभु कै सिमरन कारज पूरै प्रभु कै सिमरन कभु न जूरै
0: प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी
1: प्रभु कै सिमरन निचल आसन प्रभु कै सिमरन कमल विगासन
0: प्रभु कै सिमरन अनहर चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार
1: सिमरै से जन जिन कृपा मैया नानक तिन जन सरनी पैया
0: हर सिमरन कर भत प्रगटाए हर सिमरन लागे बेद उपाए
1: हर सिमरन पैसे जति दाते हर सिमरन नीचो कुण जाते
0: हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना
1: हर सिमरन क्यों सगल अकारा हर सिमरन मैं आपने अंकारा
0: कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ इक श्लोक
0: दीन दर दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाथ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदि
1: या मात पिता सुतमीत ना भाई मन उहा नाम तेरा संग सहाय
0: जह महा भयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरा चलै
1: जह मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी
0: अनक पुनः चरण करत नीता रह हर को नाम कूट पापर हरै
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे
0: सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हि सुखिया
1: लाख करोड़ी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै
0: अनक माया रंग तिखना बुझावै हर का नाम जपत आगावै
1: जे मार्ग हो जात कीला तै हर नाम संग होत सुहेला
0: ऐसा नामन सदा ध्याइयै नानक गुरमुख परमगत पाइयै
1: सूटत नाही को लख बाही नाम जपै तै पार पराही
0: अनक बगंजह आए संघारै हर का नाम तत्काल उधारै
1: अनक जून जन्मै मर जाम नाम जोत पावै विश्राम
0: हौ मैला मल कब हो ना धोवै हर का नाम कूट पाप खोवै
1: ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइयै साधकै संग
0: जे मार्ग के गन जाहे न पूसा हर का नाम उहा संग तोसा
1: जै पैंडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा
0: जहां पंथ तेरा को न सुजानू हर का नाम तह नाल पछानू
1: जा महा बयान तो प्रोगाम ते हर के नाम की तू ऊपर छाम
0: जहां तिरखा मन तुझ आ कर खै तह नानक हर हर अमृत बरख है
1: भगत जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम
0: हर का नाम दास की ऊट हर कै नाम उधरे जन कोट
1: हर जस कत सन दिन रात हर हर औखत साध कुमार
0: हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान
1: मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन कै बिरद विवेक है
0: हर का नाम जन को मुक्त जोत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत
1: हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न भंग
0: हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई
1: हर का नाम जन को भोजो हर नाम जपत कछ न है बिजो
0: जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा
1: हर हर जन के माल खजीना हर धन जन को आप प्रभ दीना
0: हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी
1: ओत पोत जन हर सराते सुन समाद नाम रसमाते
0: आठ पहर जन हर हर जपै हर का भत प्रगट नी छपै
1: की भगत मत पौ करै नानक जन संकेते तरै
0: पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम
1: सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा
0: नाम की महिमा संत रिदवस है संत प्रताप दुर सब नसै
1: संत का संग उड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम दे आई है
0: नाम तुलका छबर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए
1: सुखमनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ दो श्लोक
0: बहुत शास्त्र बहुत सिमरती पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदि
1: आप ताव ज्ञान सब ध्यान खर शास्त्र सिमरत वख्यान
0: योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग मन मध्य फिरे ਕਿਰਿਆ
1: ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁ ਰਤਨਾ
0: ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ
1: ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਉ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨੂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ
0: ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਥਮੀ ਫਿਰੈ ਚਰ ਜੀਵੈ ਮਹਾ ਉਦਾਸਤ ਪੀਸਰ ਥੀਵੈ
1: ਅਗਨ ਮਾਏ ਹੋ ਪ੍ਰਾਨ ਕਨਕ ਅਸ ਹੈ ਵੋ ਨਾਮ
0: ਲਿਓਲੀ ਕਰ

आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर, जोर ना जीवन मरना जोर, जोर ना राज माल मन सोर।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: Namaskar and a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Om Shanti. जिंदगी के कई सारे इन मरहलों से गुजरने के बाद अब बारी आती है कि हम हर रोज अपनी जिंदगी को कैसे जिए। बार बार हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बात करते आए हैं कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर जो जहां आप हैं उसके बहुत नजदीक ही आपको मिल जाते हैं और किस तरह उस सेंटर से जुड़ सकते हैं, कैसे वहां जाकर आपको लगता है कि आप परमात्मा के घर में हैं और कैसे ये कनेक्शन जो है वो जिस सशक्त होने का, जिस एम्पावरिंग का बात करता है वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है। मुरली एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम परमात्मा के जो महावाक्य हैं उनसे रूबरू होते हैं हर रोज। क्या होता है ऐसा खास मुरली में, क्यों जरूरी है और किस तरह से हमारी जिंदगी में बदलाव आ सकते हैं, इन सभी पर बात करने के लिए आज फिर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, इतना सब कुछ हमने जाना है, इतना सब कुछ समझ लिया है, लेकिन एक बार फिर बात यही आ जाती है कि क्या मेरे या आपके द्वारा संभव है ये सब कह पाना, ये समझ पाना, ये जान पाना, या फिर ये वो परमात्मा है जो सीधी बात कह रहे हैं।
1: हर चीज जो हम इस प्रोग्राम के दौरान डिस्कस कर रहे हैं, हर ज्ञान की वो बात, हर वो सत्य वास्तविकता जिससे हम बहुत दूर हो चुके थे, वो परमात्मा द्वारा ही हमें समझाई जाती है। सृष्टि रंगमंच पर जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता, तो वर्तमान समय जो हम कहते हैं परिवर्तन का समय चल रहा है, क्योंकि चारों तरफ अंधकार है, यू नो, मोर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, कि इतना भय है। और बहुत बार सुनने को मिलता कि ये कलयुग है, आखिर ये कलयुग कब तक ऐसा चलेगा। तो कलयुग अर्थात कलह कलहेश का युग, कि आत्माएं सारी कलह कलहेश में, घर घर में कलेश है और आत्मा सारा दिन में बहुत ज्यादा दुख और दर्द का अनुभव करती, तो ये कलयुग है। लेकिन कलयुग सदा तो नहीं चल सकता और वर्तमान समय आजकल देखे तो बहुत भय भी हो गया है कि आखिर इस सृष्टि का भविष्य क्या है, क्या होने वाला है आगे। तो यही वो समय है जो परमात्मा अपने वायदे अनुसार, आज दिन तक हमने कई बार ये पढ़ा कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की अतीक लानी होगी तो परमात्मा का वायदा है कि मैं स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होगा। तो ये वो समय है जब वो निराकार परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते और अवतरित होकर सबसे पहले वो हम आत्माओं को अपना परिचय देते कि हम कौन है आत्मा, और फिर आत्मा से जुड़ी हुई हर बात हमें समझ में आने लग जाती है, और फिर परमात्मा अपना परिचय देते कि जैसे तुम निराकार जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट कॉन्शियसनेस, मैं भी तुम्हारे ही तरह, और अपना नाम भी बताते कि मेरा नाम है शिव, और क्योंकि वो हमारे पिता हैं तो हम उन्हें शिव बाबा कहकर पुकारते हैं। और फिर परमात्मा हमें समय का परिचय देते हैं कि समय जो ये चल रहा है ये नहीं कि कोई विनाश होने वाला है, क्योंकि वो हम बहुत डर में रहते, लेकिन एक परिवर्तन की बेला है। हम इस कलयुगी सृष्टि से सत्ययुगी दुनिया की ओर जा रहे हैं। सृष्टि तो वही होगी, लेकिन आत्मा जो वर्तमान समय कमजोर है वो जब शक्तिशाली बन जाएगी तो वही सृष्टि बहुत सुंदर बन जाएगी, प्रकृति पवित्र हो जाएगी। तो ये परिवर्तन का जो कार्य है कि अ बैटरी द सोल जो कम्प्लीटली वीक हो चुकी है, आज वो फिर से चार्जिंग की प्रोसेस पर चल चुकी है, वो पावर हाउस के बिना नहीं हो सकता। हम आत्माएं समझे, हम अपने आप को सशक्त कर लें, तो ये वर्तमान समय थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हम बहुत कमजोर हो चुके हैं। और क्या होता कि वायुमंडल
0: आसपास जो माहौल है, बिल्कुल
1: वायुमंडल भी बहुत चैलेंजिंग है, तो अगर हम थोड़ा सा ट्राई भी करते फिर हमारे सामने इतनी सारी बातें आ जाती कि हम फिर से अपने आप को कमजोर महसूस करते। तो ऐसे समय पे वो पावर हाउस की शक्ति मिलना, वो परमात्मा से संबंध जुड़ना, वो इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को इजी बना देता है। और सबसे सुंदर बात तो ये कि परमात्मा द्वारा दिया हुआ

0: बस थोड़ा सा फिर प्रोसेस होता है उसको अपने जीवन में ट्राई आउट करने का और जैसे ट्राई करते हैं तो उस सुप्रीम टीचर की दी हुई टीचिंग है तो लगता है कि ये तो इजी है, इसको ऑब्स्टिकल तो मैंने ही बनाया हुआ था कि ये बहुत डिफिकल्ट है, करने लगे तो लगता है इजी है और जैसे ही वो प्राप्ति होती गई तो और करने की मोटिवेशन मिलती गई। एंड मेडिटेशन में क्योंकि वो पावर भी साथ में मिलती तो एक है नॉलेज और दूसरी है पावर और ये दोनों चीजें मिल जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल होने लगता है। हम हेल्दी होते जाते हैं तो किसी भी परिस्थिति को फेस करने की पावर क्रिएट नहीं करनी पड़ती, इट्स लाइक नेचुरली आई एम बिकमिंग पावरफुल। तो इसलिए अगर हम थोड़ा समय निकाल कर सेंटर पे जाते हैं तो परमात्मा के जो महावाक्य हैं बहुत सिंपल होते हैं, दे आर सो सिंपल कि एक क्षण के लिए आप समझेंगे इतना सिंपल
1: ये तो मुझे मालूम था कितनी बार ऐसे बात
0: इतना सिंपल क्योंकि सुप्रीम टीचर ने हमारी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को एकदम सिंपल करके
1: इतना सहज सा बन जाता है। बिल्कुल वहां से दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि मुरली आज तो हम मुरली की बात कर रहे हैं और मुरली सुनेंगे भी हम कुछ, लेकिन कितने बजे, क्योंकि वक्त का जो एक हर रोज वहां वक्त निकालना ज्यादातर स्केड्यूल्स अगर हम देखते हैं तो मुश्किल हो जाता है, तो क्या कैसे हम कब कब मुरली जो है वो सुनाई जाती है?
0: जो हर सेंटर पे एवरी सेंटर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एवरी कंट्री एक होती है मॉर्निंग क्लास और एक होती है इवनिंग क्लास। तो मॉर्निंग क्लास हर सेंटर पे अप्रोक्सीमेटली 6:30 और 7 के बीच शुरू होती, थोड़ा सा सिटी में वेरी करेगा बट अदरवाइज नॉर्मली इट इज एनी वेयर बिटवीन 6:30 से 7 बजे सुबह और ये अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स to 1 आवर की क्लास होती जिसमें 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन भी होता एंड 45 मिनट्स के लिए हम ये ज्ञान की चर्चा भी करते। तो मॉर्निंग क्लास एक है, फिर दूसरा है इवनिंग क्लास कि जो लोग मॉर्निंग में नहीं आ सकते तो इवनिंग में भी समय थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा सेंटर पे बट एनीवेयर बिटवीन अगेन 6:30 to 7:30 शाम के 6:30 से 7:30 बजे के बीच क्लास होगी हर सेंटर पे। लेकिन इसके भी अलावा अगर आपको मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइमिंग नहीं सूट करता, इसके भी अलावा आप मॉर्निंग 8 o'clock से दोपहर 12 बजे के तक कभी भी सेंटर पे जा सकते हैं और आपको बहने मुरली सुनाएंगी और शाम को भी 4:30 से 7:30 बजे तक आप कभी भी सेंटर पे जा सकते हैं।
1: तो शिवानी आज क्योंकि हमने पहले भी बात कही थी कि तय किया था कि मुरली
0: कुछ महावाक्य डायरेक्ट सुनते हैं, जैसे कई बार हम लोगों का क्वेश्चन उठता कि हम करना तो चाहते हैं, हम उस स्टेज तक पहुंचना तो चाहते हैं जो स्टेबिलिटी की है या जिसको हम कहें कम्प्लीशन की है या पॉजिटिविटी की है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं कर पाते, क्या है जो हमें रोक देता है? तो शिव बाबा परमात्मा हमें सुनाते कि उस स्थिति तक पहुंचने के लिए मुख्य दो कारण देखे जाते जो उससे हमें रोकते हैं। एक तो है वेस्ट अर्थात गंवाना और दूसरा वेट अर्थात वजन ज्यादा। अब फिर बाबा ये एक्सप्लेन करेंगे कि इसका अर्थ क्या। जैसे आजकल के जमाने में शारीरिक रोगों का कारण वेट जास्ती है, सर्व बीमारियों का निवारण वेट कम करना है। बहुत सारी बीमारियां ओबेसिटी के कारण होती हैं। तो बाबा ने कहा सर्व बीमारियों का निवारण वेट कम करना है। वैसे पुरुषार्थ की गति का कारण कि क्यों नहीं पुरुषार्थ तेज हो पाता वो है वेट ज्यादा। तो वेट कम न करना जैसे शरीर में भारीपन होने के कारण ऑटोमेटिकली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे आत्मा के बोझ से भी आत्मिक रोग भी स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है बाबा इतनी सिंप्लीफाई करके उसको समझाते हैं कि हमें क्लियरली दिखाई देता है कि आत्मा पर बोझ इतना ज्यादा है कि बीमारियां फिर जो रोग हैं आत्मा के वो ऑटोमेटिकली आ जाते। सबसे ज्यादा वेट बढ़ने का कारण क्या होगा?
1: बहुत से थॉट्स होना एक्चुअली।
0: पर वो किस तरह के थॉट्स?
1: हाँ, कहीं ना कहीं हर्ट एंगर नेगेटिविटी अब तो समझ में आता है,
0: समझ में आ गया ना। तो ये सारा बाबा का ही समझाया
1: जिन्हें हम इमोशन कहते हैं।
0: सबसे ज्यादा वेट बढ़ने का कारण जैसे शारीरिक हिसाब से ज्यादा वेट बढ़ने का कारण होता है सड़ी हुई चीजें खाते,
1: जंक खाना,
0: जंक खाना। तो बाबा ने जंक खाने के लिए कहा, सड़ी हुई चीजें खाते हैं, वैसे यहाँ भी

0: सड़ी हुई वस्तु अर्थात बीती हुई बातें जंक है, क्योंकि उससे कोई एनर्जी नहीं मिलने पाती, बिल्कुल जंक याद में फिट करने जैसा। तो अर्थात बीती हुई बातें जो न सोचने की है, अर्थात न खाने की है।
1: आज इससे ज्यादा वक्त हम जिंदगी का इसी पर
0: नहीं, उससे भी ज्यादा
1: समय सोच रहे हो
0: पास्ट में होता है। सी पास्ट कैन बी नॉट बहुत पहले,
1: पिछला
0: क्षण नहीं, ये क्षण यू नो, इस क्षण से परे हट के ऐसा क्यों
1: हुआ? अभी जो हुआ है
0: एक क्षण। तो बाबा ने कहा जो बीती हुई बातें जो न सोचने की है अर्थात न खाने की है, ऐसी सड़ी हुई बातों को बुद्धि द्वारा स्वीकार कर लेते हैं, अथवा हर आत्मा की कमियों या अवगुणों का स्वयं में धारण करना,
1: दूसरों को देख देख के उनकी गलतियां।
0: परमात्मा ये बहुत क्लियर करके हमें, ये बहुत डीप फिलोसफी है जो बाबा ने आकर बहुत सिंपल कर दिया कि जितना समय आप किसी आत्मा के अवगुण को देख रहे हो या आप किसी कमजोरी को देख रहे हो, तो आप समझ लो कि उसको आप अपने अंदर धारण कर रहे हो। सो इनिशियली व्हेन आई यूज्ड टू लिसन टू दिस एट द मुरली, आई वाज लाइक हाउ इज दिस पॉसिबल कि आप किसी की कमजोरी को देख रहे हो तो वो आपकी कैसे बन जाएगी? बट देन स्लोली ग्रेजुअली यू रियलाइज कि किसी की कमजोरी को देखना मतलब क्या,
1: उसी से होकर गुजरोगे?
0: नहीं, वो थॉट्स क्रिएट करना ना। लेट्स से कि मैं आपके अंदर कमजोरी देख रही हूँ कि आप बहुत गुस्से वाले हो, लेट्स से, एंड मेरा फोकस सारा इस पर आ जाता है, तो मेरी हर थॉट जो क्रिएट हो रही है वो क्रोध से रिलेटेड है। इसका मतलब आपकी एनर्जी मैंने कंज्यूम कर ली। और इसी का ऑपोजिट कि हर आत्मा की विशेषता को देखना
1: कि वो बहुत अच्छी है, वो बहुत प्यार वाली है, बहुत प्यार है।
0: क्योंकि हर आत्मा के अंदर
1: अच्छाई तो है,
0: दोनों चीजें हैं, लेकिन मेरा दृष्टिकोण बहुत ज्यादा आज कमियों को ढूंढता रहता है।
1: और बहुत अच्छी बात यह है कि जहां हमने कमियों को ढूंढना शुरू किया मतलब उस कमी को हमने खुद धारण कर लिया।
0: और अगर ये समझ में आ जाए तो हम कितना अटेंशन
1: हम नहीं करेंगे। हाँ, हम क्यों करेंगे? डेफिनेटली द वे यू नो लाइक समवेयर व्हेन वी अंडरस्टैंड कि जैसे गुस्सा करते हैं हमारे ब्रेन सेल्स परमानेंटली डेड हो जाते हैं, तो वो गुस्सा करने का थॉट भी नहीं आएगा।
0: नहीं आएगा। अब यही मुझे समझ में आने लगे कि जो कमजोरी मुझे आपके अंदर अच्छी नहीं लग रही है, लेट्स से मुझे नहीं अच्छी लगती कि आपके अंदर ये आदत है, लेकिन उसके ऊपर फोकस करने से आपके अंदर तो वो है ही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है और एक्चुअली मैं उसको ग्रहण कर रही हूँ, तो कितना डैमेज है। और चिंतन ये कर रही हूँ कि आपको कैसे चेंज कर दूँ कि आपके लिए ये बहुत हानिकारक है, लेकिन वो चिंतन करते करते मैं उस एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम करती हूँ। तो बाबा ने कहा दो बातें, सड़ी हुई भोजन है जो हम खाते हैं, बीती हुई बात जो हम बहुत ज्यादा खाते हैं, और दूसरा है आत्माओं की कमियां वो व अवगुण को स्वयं में धारण करना, इसको भी सड़ी हुई वस्तु ही कहेंगे। तली हुई जो वस्तु होती है वो खाने में बड़ी अच्छी लगती है, तली हुई है हम सबको पता है कि वो हार्मफुल है, फिर भी वो बहुत टेम्पटिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है। तो बाबा ने कहा तली हुई वस्तु खाने में बड़ी अच्छी लगती है, अपने तरफ आकर्षण भी बहुत करती है, न दिल होते भी थोड़ा सा खा लेते हैं। जितना ही आकर्षण वाली होती है उतना ही नुकसान वाले भी होती है। वैसे यहाँ भी फिर आकर्षण की चीजें हैं, एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना, गॉसिप। एंड अगेन गॉसिप करना मतलब अगर हम क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं किसी को तो हम वही एनर्जी अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन गॉसिप मतलब किसी के बारे में बात करना, इधर उधर की बात करना, पता होते हुए भी अट्रैक्टिव बहुत लगते हैं और बहुत जल्दी हम उसकी तरफ,
1: क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कुछ सुलेस दे रही होती है, वो हमारे किसी न किसी इनर वीकनेस को वो स्ट्रांग कर रहे होते हैं।
0: तो इसलिए कितनी अच्छी तरह से बताया कि तली हुई चीज पता भी है
1: कि नहीं अच्छी, हार्मफुल है,
0: फिर भी वो आकर्षण करती है, न चाहते हुए भी करते हैं कि थोड़ा सा खा ले। इसी तरह यहाँ जो आकर्षण की चीजें हैं वो है एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना। कितनी बार एक दूसरे के पास जाते हैं और क्या खबर है, यू नो कि क्या खबर मिलती है, समथिंग न्यू ऑफिस में क्या हो रहा है, आस पड़ोस में क्या हो रहा है। लेन देन करने का होता है लेकिन उसका रिजल्ट कहते हैं, हम बातों में लेन देन कर रहे हैं सिर्फ, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, न्यूज एक्सचेंज, उसका रिजल्ट एक दो के प्रति घृणा दृष्टि हो जाती है। आपको पता है वो ऐसे, आपको पता है वो ऐसे, जितना मैं जिसके साथ शेयर करूंगी तो एक दो के प्रति हमारी क्या हो जाएगी, घृणा दृष्टि हो जाती है। समझते हैं मनोरंजन है,
1: अगेन
0: टाइम पास नहीं रहते, क्या कर रहे थे, बस टाइम पास बातें कर रहे थे, लेकिन अनेकों के मन को रंजन करते हैं, अनेकों के मन को चोट पहुंचाते हैं, दर्द देते हैं। तो बाहर का रूप आकर्षण का है लेकिन रिजल्ट गिराने वाला है। ऐसी बातों का बुद्धि द्वारा धारण करना अर्थात सेवन करना, इस कारण से वेट बढ़ जाता है। हमें रियलाइज भी नहीं होता सारा दिन में कि किन बातों से आत्मा के ऊपर का बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो बाबा ने तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें आज बताई, पास्ट का चिंतन करना, बीती हुई बातों के बारे में सोचना, दूसरा आत्माओं की कमियां कमजोरियों को देखना, और तीसरा व्यर्थ समाचार की लेन देन करना, जो हम समझते कि मनोरंजन है लेकिन अनेकों के मन को रंजन करता है। जैसे शारीरिक वेट बढ़ने के कारण दौड़ी नहीं लगा सकते, चढ़ाई नहीं चढ़ सकेंगे, वैसे ही यहाँ भी जब आत्मा पर इतना बोझ हो जाएगा तो यहाँ भी पुरुषार्थ में तीव्र गति नहीं प्राप्त कर सकते। फिर कहेंगे हम करना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा, तो वो हमें पता ही नहीं चलता कि ये जो सारा दिन में छोटी छोटी बातें कर दी इसकी वजह से आत्मा पर बहुत बोझ हो गया है। अब जब हम वो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो वो हो नहीं सकता। सारा दिन हल्का रहना चाहते हैं, इंटरनली उड़ते रहना चाहते हैं लेकिन हैवी हो गए, आई कांट फ्लाई इनसाइड। हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। चढ़ती कला अर्थात मेरी जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चल रही है, इन अ बेटर डायरेक्शन, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन,
1: बिकॉज आई विल बी सो हैवी, इट्स सो डिफिकल्ट टू क्लाइम अप,
0: वो हो नहीं पाएगा। वजन भारी वाला हर स्थान पर सेट नहीं हो पाता। अगर किसी का बहुत ज्यादा वेट है उसको सीट बहुत मुश्किल से उसके लिए मिलती है, और अगर कोई बहुत पतला है वो कहीं भी फिट हो जाएगा। तो बाबा ने कहा इसी तरह हम अगर आत्मा भारी है तो वो हर परिस्थिति में अपने आप को सेट नहीं कर पाएगी। तो बाबा ने कहा इसलिए हल्के रहना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए बाबा भी बार बार याद दिलाते कि वेट कम करो। इसका साधन क्या साधन होगा वेट कम करने का?
1: एक्सरसाइज।
0: जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन है एक्सरसाइज, वैसे ही आत्मिक एक्सरसाइज योग अभ्यास द्वारा हम वेट को कम कर सकते हैं। अब बाबा ने ये भी बताया कि योग अभ्यास क्या करना है। अभी अभी कर्म योगी अर्थात साकारी, कर्म कर रहे हैं ना, कर्म से तो न्यारे नहीं होंगे, तो अभी अभी कर्म योगी साकारी, साकारी मतलब कॉर्पोरियल फॉर्म में, इस साकार शरीर में, तो इस क्षण इस साकार शरीर में, नेक्स्ट क्षण
1: निराकार,
0: निराकार, यू नो दिस इज लाइक
1: डू दिस एक्सरसाइज,
0: दिस एक्सरसाइज। अब जैसे हम स्ट्रेट हैं एंड देन वी बेंड डाउन एंड टच, अगेन कम बैक स्ट्रेट, अगेन बेंड डाउन एंड टच, जब हम बार बार ये करते हैं तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और फिर हम किसी भी सिचुएशन में
1: हैंडल कर सकते हैं, यू नो।
0: अगर मेरी बॉडी बहुत स्टिफ है, यू नो, तो फिर अगर मुझे बहुत मूव करना पड़े, एडजस्ट करना पड़े, मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ तो मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा क्योंकि मेरी बॉडी बहुत स्टिफ है। लेकिन रोज वो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करने से किसी भी सिचुएशन में बहुत इजी।
1: तो दैट्स वंडरफुल, यू नो, साकार और निराकार में, तो जैसे सिचुएशन आएगी मुझे निराकार जाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी,
0: नहीं आएंगे। और ज्यादातर होगा क्या कि बार बार ये एक्सरसाइज करने से मेरे अंदर इतनी पावर उस टाइम भरी होगी, जैसे हम हमेशा अनुभव करते कि दो मिनट में योग करते तो कितना पावरफुल लगता है। तो अगर हर घंटे ये किया होगा, साकार निराकार, साकार निराकार, और ये हम घंटे के बीच भी कर सकते हैं। निराकार अर्थात जो इस साकार दुनिया से परे है, जो हम हमेशा देखते कि परम धाम अपना घर, तो एक सेकेंड मैं यहां हूं, अगले सेकेंड
1: वहां पहुंच जाते।
0: अभी क्या हो रहा है, हम बैठते हैं, करने लगता है, पहुंच नहीं रहे, हो नहीं रहा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसको सारा दिन में अगर अभ्यास किया होगा, एक सेकंड यहाँ, नेक्स्ट सेकंड वहां, तो फिर करना बहुत इजी हो जाएगा। तो अभी अभी कर्म योगी अर्थात साकारी बन साकार सृष्टि का पाठ बजाना, इस साकार सृष्टि पर अपना पाठ बजाना, और अभी अभी निराकारी बन परम धाम का अनुभव करना। ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो, सदा हल्के हो जाएंगे, भारीपन खत्म हो जाएगा, पुरुषार्थ की गति तीव्र होती जाएगी। बिकॉज जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी उतना फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत इजी हो जाएगा, और जितनी बार हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो सोल कॉन्शियसनेस
1: ज्यादा होती जाएगी, ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। एक्चुअली
0: सोल कॉन्शियसनेस मेरी नेचुरल बनती जाएगी, और जितनी सोल कॉन्शियसनेस होती गई ईगो खत्म होता जाएगा, और जहां ईगो खत्म हो रहा है वहां सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, क्योंकि सेल्फ एस्टीम मेरा बहुत बढ़ जाता है। फिर बाबा ने कहा कि ये सब कुछ समझ तो आ जाता है हमें, लेकिन फिर भी करते करते इस यात्रा के दौरान मुश्किल क्यों लगता है? सहज फिर भी मुश्किल लगता। तो बाबा ने कहा ज्ञान का कोर्स तो 7 दिन का ही है, 7 दिन में सब कुछ समझ में आ जाता, सारी पॉइंट्स भी समझ में आ जाती, सत्य परिचय भी मिल जाता, लेकिन फिर भी चलते चलते कहते ये मुश्किल क्यों? और जबकि इस राजयोग को हम कहते ये सहज राजयोग है, लेकिन फिर भी हम खुद ही उसको मुश्किल बना देते। परंतु मुश्किल क्यों होता है? उसका कारण है अपनी ही कमजोरी, कोई ना कोई पुराना संस्कार। बाबा ये नहीं कहता आपका संस्कार, बाबा नेवर सेज कोई ना कोई आपका संस्कार बीच में आता, बिकॉज ही इज वेरी क्लियर कि आपका संस्कार तो कोई ना कोई पुराना संस्कार सहज रास्ते के बीच में बंधन बन रुकावट डालता है, जो हमने देखा ऑब्स्टिकल अपने ही संस्कार कई बार बन जाते हैं, और शक्ति न होने के कारण पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं। देखा ना, ऑब्स्टिकल आएगा हम उसको ही तोड़ने लग जाते हैं, और तोड़ते तोड़ते दिल शिकस्त हो जाते हैं,
1: थक जाते हैं।
0: लेकिन सहज तरीका क्या है? पत्थर को तोड़ना नहीं है, लेकिन जंप लगाना है। द होल हर्डल थिंग कम्स फ्रॉम द मुरली। तो कई बार भाई बहने कहते हैं ये कहाँ से इतना सिंपलिसिटी से आता, ये सारा कुछ तो बाबा ने मुरली में ही सुनाया है। तो पत्थर को तोड़ना नहीं है, लेकिन जंप लगा के पार होना है। ये क्यों हुआ? ये होना नहीं चाहिए, आखिर ये कब तक चलेगा? ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों होता है? ये सब है व्यर्थ संकल्प, पत्थर को तोड़ने का प्रयास। क्यों हुआ? क्या कर रहे हैं हम? मूव अहेड? नो, वील स्टैंड
1: देयर एक्चुअली।
0: तो कितने बाबा कहते सारे आपके क्वेश्चन है, ये क्यों हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। जो क्यों हुआ ठीक है, समझ में आ गया, होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये होना नहीं चाहिए था, आखिर ये कब तक ऐसा चलेगा? ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों? तो ये सारे व्यर्थ संकल्प पत्थर तोड़ना है, लेकिन एक ही शब्द है, ड्रामा। ये ड्रामा की ये सीन है, इस सीन को एक्सेप्ट करें एंड
1: गो अहेड
0: जंप। इसे पत्थर तोड़ो नहीं, पत्थर के ऊपर जंप कर जाओ। लेकिन उस समय इस पॉइंट को याद रखना है कि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, बेनिफिशियल है। तो उसके लिए एक ही वर्ड याद रखना पड़ता, ड्रामा। ड्रामा में ये सीन इस टाइम जैसी है वैसी परफेक्ट है। दूसरी कमजोरी ये होती है कि समय पर पॉइंट टच ही नहीं होती। पछड़ा ज्ञान सुन लिया, समझ लिया, पढ़ भी लिया, यहाँ बैठ भी गया, लेकिन बाबा कहते हैं समय पर तो पॉइंट याद ही नहीं रही।
1: हाँ, जब सिचुएशन आ गई तो
0: समय पर जब वो परिस्थिति आई बाद में सोचेंगे राइट एक्सेप्ट करना चाहिए, चेंज तो हम लोगों को कर नहीं सकते, तो बाद में सारी पॉइंट्स याद आ जाती है, लेकिन समय पर वो पॉइंट टच नहीं होती। वैसे सब पॉइंट्स बुद्धि में या डायरी में बहुत सारी हैं, लेकिन समय रूपी डायरी में उस समय वो पॉइंट टच नहीं होती। इसके लिए क्या करें? सदा ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स को रिवाइज करते रहो। इट शुड बी देयर ऑन माय टॉप शेल्फ, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर आती जाती है ना, और ये सारी जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं अंदर के कबर्ड में चली जाती है। तो फिर जब वो परिस्थिति आती है तो उतना टाइम नहीं होता कि जो उसको बैक ऑफ द माइंड से आगे लाना है। तो बहुत सिंपल तरीका है कि हर रोज ज्ञान के मुख्य पॉइंट्स को रिवाइज करते रहो, और यही रिविजन का साधन मुरली बन जाती है। क्योंकि रोज जब हम सेंटर पर मुरली सुनने जाते तो ज्ञान के वो पॉइंट्स
2: रिपीट होते जाते हैं,
0: रिवाइज होती जाती है बार बार, रोज रोज रिवाइज। अगर हम महीने में एक बार सुने तो फिर तो कभी भी नहीं याद रहेगी परिस्थिति के दौरान। अनुभव में फिर लाते रहो, पहले रिवाइज करते रहो, फिर उसको अनुभव में लाते रहो, चेक करते रहो, और अपने आप को चेक करते करते साथ में चेंज करते रहो। सिर्फ नॉलेज को पॉइंट बनाकर डायरी में रखेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगी। तो चेक करते रहो, और चेक करते करते साथ साथ चेंज करते रहो, फिर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो पत्थर तोड़ने में टाइम वेस्ट होता है कि क्यों, क्या, कैसा, तुरंत वर्ड याद आएगा ड्रामा एंड आई जंप। ड्रामा मीन्स एक्सेप्टेंस, जैसे ही हम ड्रामा शब्द कहते हैं तो एक्सेप्टेंस याद आता। अभी कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में नहीं लगना। व्यर्थ संकल्पों के हथौड़े से समस्या रूपी पत्थर को तोड़ने में नहीं लगना।
2: व्यर्थ के संकल्प,
0: आई जस्ट हैव टू विजुअलाइज माई सेल्फ डूइंग दिस
2: एक्चुअली,
0: कि परिस्थिति है वो एक पत्थर ऑब्स्टिकल सामने खड़ी है, और मैं जितनी बार व्यर्थ संकल्प उसके प्रति क्रिएट करती तो मैं उस पत्थर को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये मजदूरी करना छोड़ दो। अब इतनी सुंदर ये महावाक्य होते कि इतनी सुंदर बात सारा दिन में ऑटोमेटिकली मुझे याद रहती है, और जब वो सीन बनाकर उसको फिट कर लेते हैं
2: व्हेनेवर द प्रॉब्लम कम्स एक्चुअली, ये तो हमने भी रियलाइज किया है कि मेमोरी में अगर आपके आ गया एक बार तो वो कभी भी फ्लैश आ जाता है। जैसे सिचुएशन होती है धीरे धीरे ये होने लगता है कि जैसे सिचुएशन आएगी वही फ्लैश आएगा आपका,
0: क्योंकि आप रेगुलरली सुन रहे हो ना। तो रेगुलरली अंदर फीड करने से वो ज्ञान की पॉइंट एकदम फ्रेश लेयर पे है, तो वो तुरंत से आ जाएगी। रेगुलरली नहीं रिवाइज करेंगे तो परिस्थिति क्रॉस होने के बाद में रियलाइज होगा कि ऐसा होना चाहिए था।
2: तो आज की इस पूरी बातचीत के लिए मुरली आपने हमें सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओम
2: शांति। जीवन को चलाने के लिए हमें हर रोज दिशा निर्देश चाहिए, क्योंकि हम उस युग में हैं जहां शायद स्व के साथ काम करके, अपने आप काम करके, पूरे एनवायरमेंट के साथ हम एक ना हो पाए, और जिस राह पर हम चलना चाहते हैं वो ना चल पाए। ऐसे में सेंटर पे जाना और मुरली सुनना जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। कोई बात है, कोई ऐसा सवाल जो आपके पास है, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फोन कीजिए या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं।
3: हमारे फोन नंबर है 9999334555, 9999334666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com।
2: अवेकनिंग इस्लामा कुमारी का ये सफर यूं ही चलता रहेगा। आपके सवाल अभी भी हमारे पास है, तो उन्हीं सवालों का जवाब मिलकर तलाशेंगे आने वाली घड़ी में। हम दीजिए इजाजत, ओम शांति।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: अज दा विचार अज दी कहानी हर रोज तुसी सुनदे हो शो हांजी मेलबर्न विच। तुहाडी डिमांड उत्ते आओ एक बार फिर सुनदे आ इस हफ्ते दी एक बेहतरीन कहानी।
3: रेडियो हांजी 1674 मास करदे आ दिन तुहाडा वधिया जा रहा होएगा चढ़दी कला दे विच होगे। समा हो चुका अज दी कहानी दा अज दे विचार दा। कहिंदे ने एक वारी एक नौजवान नूं आश्रम दे विच छड्डिया गया। प्यो दा मन सी कि कुछ सिखे। गुरु ने पहले दिन बुलाया तो पूछा की करना चाहना जी। मेरे पिता जी कहिंदे सी तू ध्यान करना सिख ला। मैनू नहीं पता किन्ना क समा लगना पर जो पिता जी कहिंदे ने वो मैं करन दे लिए इत्थे आ गया। गुरु ने जी ऐ आख्या कुछ एक नियम दसते सवेरे इन्ने बजे उठना अमृत वेले उठ के पानी भर के लैके आना आके साधना करनी है ध्यान करना बाकियों वेखना जो करते ने वो करना उन्हों का हाथ बनाना को साफ सफाई के कार्ज इस सारे कुछ दे विच हौली हौली नाल दी नाल तेरी सिक्ख्या चलती रहूगी। एक दो दिन उठा सवेरे पर बाद में औखा लगन लग पाया किहड़ा एडी सवेरे सवेरे उठे। आके गुरु ने पूछा तीसरे एक दिन ध्यान कदों सिखाउणा तुसीं। मैं तो सिर्फ ध्यान ही सीखना चाहना। गुरु ने हस के कहा जदों सवेरे सवेरे तू उठदा तो बाकी जिहड़े समाधि दे विच बैठे हुंदे ने रब दे नां च लीन हुंदे ने कुदरत दे नाल इकमेक होण दी कोशिश करदे ने ओही ते ध्यान है। जाके मन दे विच सोचदा कि जे सवेरे सवेरे इस वक्त उठना ये काम करना इन्ना बोरिंग काम फिर मैं ध्यान सीख के की करना। थोड़े दिन बदो रुदी कढ़े ते एक दिन गुरु नूं आके कहण लगा जी मैनू लगदा मेरे मतलब दा ये काम नहीं मैं तो वापस दुनियादारी दे विच ही चंगा कोशिश करूँगा मैं घर भी ना जावां ये मेरे को नहीं जी होना। गुरु ने कहा ठीक है भाई जिदा तेरी इच्छा। जाते जाते पिछों आवाज मार के कहा वेख भाई तू कहना है कि मेरे को ध्यान नहीं सीखा जाना पर एक गल याद रखी ध्यान तो बिना यह दुनियादारी चलती नहीं हो। ध्यान का मतलब ये नहीं कि इस

0: ਡੇਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈ ਆ ਸਾਡੀ ਝਾਂਜਰ ਵਿਹੜੇ ਗਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਝਾਂਜਰ ਵਿਹੜੇ ਗਹਿਰਾਂ।
1: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं। इसमें चार चांद, रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
2: यार तू इतने इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए, लेकिन

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी लै जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
1: थापी,
2: मैं सोचती सी के अपन कबड्डी दी टीम बना ली।
3: तू पहलवान बनना, पहलवान जम।
4: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जयदीप विडिंग, नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हशनीन चौहान ते होर बहुत सारे सितारियां नाल सजी फिल्म रिलीज होने जा रही है थोड़ी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच अक्तूबर 16, 2026 नू।

0: यार तू इतनी नीचे थी, आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਲਕਹਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ।

0: यो हाँ जी 1674 है।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: थापी,
5: मैं सोचती सी के अपन कबड्डी दी टीम बना ली।
6: तू पहलवान बनना, पहलवान जम।
7: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जयदीप वडिंग, नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हशनीन चौहान ते होर बहुत सारे सितारियां नाल सजी फिल्म रिलीज होन जा रही है थोड़ी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच अक्तूबर 16 2026 नू।